हिड़े अक्षर को बाटो रोकिन्न कहिले गति रोजे अक्षर को क्षेत्र निरंतर छ उन्नति शंका अक्षर में छैन न त चिंता व्यथा खति लंका मात्रै कहाँ हो र जितिन्छ अमरावती हाके अक्षर का सेना हारिन्न कहिले रण तानी अक्षर को तादो जितौ संग्राम भीषण बोकी अक्षर का झंडा क्रांति मा हो मिऊ सब चढ़ी अक्षर कई डुंगा ज्ञान गंगा तरू अब चुहिदैन कतै तप्प अविनाशी छ अक्षर चुहिदैन कतै तप्प अविनाशी छ अक्षर गतिमान ऊर्ध्वगामी छ अग्रगामी।

0: रंग बहार रंग बहार
1: वज संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियर
0: वज पेन्से घर रंगाउनु होस् लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगाए 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि घर रंगाउ खुशी बनाऊ उपहार जित्ने अवसर पाऊ
0: वज पेन्से

0: रंग बहार रंग बहार
1: वर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: वर्जर पेंट से घर रंगाउनु होस् त लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ
0: वर्जर पेंट

0: रंग बहार रंग बहार
1: वर्ज संगे उपहार उपहार बंपर मा यामाहा रेजियार
0: वर्ज पेंट से घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बंपर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगाए 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि
2: घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ
0: वर्ज पेंट